जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना के सकी थारिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। उड़े उड़े आवे से कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया। सब निधान दस इट सिधान, ठाकुर करतल तरिया, जन नानक बल बल सत बल जाइए, तेरा अंत न पार आवरिया। राग यासा महला चौथा, सो पुरख एको अंकार, सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हरि अगम्मा अगम्य अपारा, सबत्यावें सबत्यावें तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग में सुख वासी, से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो ते आया जी, तिन का भओ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता।

खांब विकांदड़े जेल हां किन्ना सावी तोल तान जड़ाई अपने लहा सो सज्जन टोल सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सब ना दावे साह धन वाहिगुरु साहिब जी देव गंधारी महला पंजवां माई प्रभ के चरण निहारों करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन ते कबो ना डारो माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रह स्वामी मेरे

गुण गावा ठाकुर अविनाशे, काल मल सगले चारों, नाम निधान नानक दान पामो, कंठ लाए उर तारों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, वडभागे हाँ जिथे आप जी ने संध्या समय नूं मुख रखदे हां शब्द चौंकी उपरंत सोधा रहरा साहिब जी की पावन बाणी दे पाठ सरवण कीते ने। सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने सरवण कीते ने। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का। सेवा निभाउणगे सत्कार योग भाई हरमनदीप सिंह जी, हजूरी रागी जथा सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर वाले। औतना पासों सतगुरां की पावन बाणी के शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। भुलां चुकां दी खिमा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाह।

साहिब जी कृपा करन, इन्नियां कीर्तन दियां सेवावां प्रवान करनियां जी, अगाध अबोध बाणी पढ़दियां होईयां बेअंत भुलां दी माफी। आओ अति सत्कार जो ग्ञानी गुरशन सिंह जी आप जी नूं कथा विचारां द्वारा निहाल करनगे, दास रण दी असीस प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।

तन में गुरु सब जी, तन में गुरु सब जी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। धन वाहिगुरु साहिब जी, देव गंधारी महला पंजवां, माई प्रभ के चरण निहारों, करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन ते कबो न डारों। माई प्रभ के चरण निहारों, करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन ते कबो न डारों। रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक, काम क्रोध बिख जारों, सब ते नीच आत्म कर मानो, मन में ए सुख धारों। गुण गावा ठाकुर अविनाशी, कल मल सगले चारों, नाम निधान नानक दान पावों, कंठ लाए और तारों। गुण गावा ठाकुर अविनाशी, कल मल सगले चारों, नाम निधान नानक दान पावों, कंठ लाए और तारों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारयोग सतसंगी जिन्हों वड़ पा गए, जिथे आप जिया ने सत्कार योग ढाडी जिथे पासों वारा ते इतिहास सरवण किया है। सरबत दे भले दी अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक दी दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। हुण गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूपां दी सेवा संभाल, सोहिल साहब पावन बाणी के पाठ होणगे। समाप्ति तो उपरंत आप संगतां ने कड़ा प्रसादी देख लिया कि गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोहिला रागोड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर किरत आखिए, करते का होए बिचारो, तित कर गावो सोहिला, सिवरियो सृजनहारो, तुम गावो मेरे निरपो का सोहिला, हम वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन देखे गा दे बनहार, तदाने कीमत ना पवे तिसदा ते कौन शुमार, समत सहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहु, सजणिया सेसड़िया ज्यों वे साहिब सिउ मेल। घर घर हो पहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिये नानक से दे अवन, राग असा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर को वेस्य अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वड़ाई तोय रहाओ। विसोए चसियां कड़ियां पहरां, तिती वारी मां होआ, सूरज को रुत अनेक, नानक करते के किते वे सुराग तना, श्री महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तू माले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पाव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त ननायक तोही, सहस पद विमाल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध में चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चारण सब में चारण होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावे सुवारती होए।
ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਵੰਦਨੋ ਮੋਹਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾ ਸਾਰਾ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਓ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁੱਖ ਭਾਵੈ ਜਮਕਾਲ ਸੈਂਸਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਸ਼ੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮਿਤਾ ਸੰ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਘਟੇ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿੰਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਬਨੇ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬੋਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਤੁਧਿਆ ਗਿਰਦਾ।

तनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभंगुर प्रसाद गुरपुरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जै जाइए तहां सहेले कर कृपा प्रभ मेले हर गुण गावो सदा सुपाही मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाई दर्शन दे जीवां गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा ए बिनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम करे अपने चेरे अपनी शरण रा प्रभ दाते गुर प्रसाद किन बिरले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वसे मेरे चीता नानक एक करे अरदास विसरना ही पूर्ण गुणता सोका होटा गुरु सेवी आए एन सहसवाए दर्शन परस्या गुरु कै जन्म मरण दो जाए हुआ सिद्ध संबंधी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठे सो ही है सब नाम दा वेसा सतनाम धन वाहिगुरु जी सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना तिसनू पूजे सब कोए सबना अपावा सिर अपाओ है हर नाम प्राप्त होए जे सतगुर सेवे अपना तिसनू पूजे सब कोए सबना अपावा सिर अपाओ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल शांत वसै जप हृदय सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पैनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पावे गुणी निदान हर सुदाता मन वसै होमे जाए गुमान नानक नदरी पाई है ताय अंदर लागे ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट विकार गया
मन सहज जिता तै प्रजोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता अन दिन हर के गुण रवे गुण प्रगट कीता सबना दाता एक है इको हर मिता अन दिन हर के गुण रवै गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा जे सतगुरु सेवे अपना तिसनु पूजे सब कोए सबना उपावा सिर अपाओ है हर नाम प्राप्त होए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग प्रसाद जैसा सतगुरु सुनिंदा तैसो ही मंडीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ हर नाम मंदड़ाइंदा कटे हमें रोग नानक सतगुरु तिना मलाया जिन तुरहे प्यास संजोग। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मारु सोले मला पंजवा इक्यो ओंकार सतगुर प्रसाद कला उपाए तरी जिन तरना गगन रहाया हुक्मे चरणा अग्न पाए दिन में बादी सो पर राखे पाई है जी जंद कोरिन संभाहे कर्ण का समराथ अपाहे किन में था बो था पणहारा सोई तेरा सहाई है मात घर में जिन पर पालिया सास ग्रह सो संग संभालिया सदा हदा जपी है सो प्रीतम वड्डी जिस वड्याई है

0: जी राम। निरपौ निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवै करम चढ़ाओ, भिन्नी रहन दिना मन चाओ। सिखी सिखिया गुर विचार, नदरी करम लगाए पार, कुल्लू चरखा चक्की चक, थलवार ओले बहुत आनंद, लाटू मादानिया नगाह, पंखी पौंदिया ने नसा, सूए चाड़ पवाइए जंत, नानक पौंदिया गणत नांत, बांधन बंद पवाए सोए, पया किरत नचे सब कोई, नच नच हसे चले सिर हुए, उडना जाही सितना हो, नचन कुदन मन का चाऊ, नानक दिन मन पाऊ, तना मन पाऊ पौड़ी।
1: नाउ तेरा निरंकार है, ना ले अंदर न जाइए, जीव पिंड सब कुछ दा देखा जे अगवाइए, जे लोड़े चुनाए अपना कृपनो नी सदाइए, जे जरवाना पर हरे जरवेश करेंदी आइए, को रहे ना परिय पाइए, को रहे ना परिय पाइए।
0: पंथ दसावा नित खड़ी,

लाख तप ऊपर तीर्थां सहजोग बेबाण। लख सुरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण, लख सुरते लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण। जिन कर

जुगत जाने जी ओ धरत काया साधकै विच ती करता भी ओ सच तां परजाणीऐ जे सिख सची ले दया जाणै जी की किश पुन दान करे सच तां परजाणीऐ जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ कै बह रहै करे निवास सच सवना होए दारू पाप कड्डै धोए नानक बखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तलीका।

0: दुध में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादुम भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंकिया कल में वेद अथर्वण हुआ नाउ खुदाई अल्लाहु पया नील वस्त्रले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमलकिया चारे वेद हुए सत्यार पढ़े गुणहे तिन चार विचार भाव भगत करने सदाए तव नानक मुखंतर पाए पौड़ी
1: सतगुरु बट्टो वारे आज तुम लेख संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्नी नेत्री जगत ने हाले कसम छोर दूजे लगी डूबे सिमट जा रहा सतगुरु है भय था लेख ने विचारिया कर कृपा पारे था।

तगन हथी तगन जिहवा तगन की वी तगा आपे वत्त वड़ता गेवरा कत्तै लै पहाड़ करे भी आहू कणका गल से राहू सुन वेखो।

0: हाथे जूठा मुख पसे नित नित हो एक बार सुचे ना आखिए बहन जब बिंडा तोए सुचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी
1: त्रिपला ने पावन में भरंगी हम सवारे आ कोठे मंडम बाड़िया लै बैठे कर पसारे आ चीज कर मन भाव दे हर पूजन ना हारे आ कर फरमास खाया वेख महल मन सारे आ जरे आई जुगल खारे आ जरे जुगल।

मन का सूत कलोभ है, जिहवा सूत कूड़, अखी सूत वेखना पार, त्रै पर धन रूप, कन्नी सूत कन पै लायत बारी खाई, नानक हंसा आदमी बदे जम

का जो तिल पौड़ी अपे करना की हो अरे अपे ही ते धारी है दिख कितने अपना धर कच्ची।

तुमरी गात में तो नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी क्यों ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बहुत जी सहाय वार, श्री बहुत ही पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए। फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिठै सब दो जाए, तेग बहादुर सिमरै करनो निध्यावे ताए। सब थाई हुई सहाय दसवीं पातशाह, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, ओ सब थाई हुई सहाय। दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसे से। बोलो जी वाह। पंजा प्यारिया चौं सब जादियां, चालियां मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपया, वंड छकिया, देख चलाई, तेग बाजी दे के अंडर कीता, तिना गुरम प्यारे सचारे की कमाई का ध्यान तर खालसी से। बोलो जी वाह। जिन्हां सिंह सिंघणियां धर्म सी दिता, बंद बंद कटवाए, चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल तन चरवाए, उबलदियां देगां विचों उबाले गए, खोपरियां लोहाइया, गुरद्वारियां दी सेवा संभाल ली, कुरबानियां कीतियां, तेरे पाणे नूं मिठा करके मन्या, असह ते कहिगा सहार दे शीदो सिकिद केसां, सवासां संग नभाई धर्म निहारिया। तिना समूह शहीद सिंह सिंघणियां की कमाई का ध्यान तर खालसे से। बोलो जी वाह। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तर खालसे से। बोलो जी वाह। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेत आवे, चेत आवण का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रिछे रहा, दे ते फतेह बिरद की पैज, पंथ के जी श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले खालसे से। बोलो जी वाह। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, वसाह दान, प्रोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुगा टल धर्म का जयकार, खालसे जी के बोल बाले खालसे से। बोलो जी वाह। सिखा ना मन नीवा, मात उची माते राखे, आप अकाल पुरख अंतर जामे, गुरु गरीब निवास जी पातशाह, पांदे सदा सहाज दार पिता जी, ओ श्री ननकाणा साहब, होर गुरुद्वारे गुरुधामा तो जिन्हों तो पंथ नूं भी छोड़िया गया, सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। निमाणिया दे माण, नताणिया दे तान, न्योटिया दी ओढ़ने आसरन दे आसरा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी आप दे पार बख्श रहमत कृपा दा सदका अमृत वेले सजे दीवाना विच आप दी लाही बाणी दे पाठ उपरंत श्री आसज कुमार दे कीर्तन होए सेवा करदियां होईयां पुल्लां बख्श लैणियां, बड़ी सोहणी बाणी दा भाव सरबत संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा, सरबत संगतां दी हाजरी तिल फुल भेटावां अपने दर ते प्रवान करनियां, दरों करों सिखी सिद भरोसा नामदान बख्शना, परिवारां विच सुख वरताउणा, सरबत संगतां दे कारोबारां दी बरकतां बख्शणियां, पंथ दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखणा, पवित्र हजूरी विच कड़ा प्रशाद देगा हाजरा दार प्रवान होवै, परवान दे संद वरताउण दी आग्या बख्शो, मेहर करो, पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी। सही गुरम प्यारे मेलो, जिन्हों मिलिया तेरा नाम चेता होवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की, सब सिखन का हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभ को मिल बोच है, राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे,
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ।

और ये लोग आदि सी इत्थे दे रहण वाले सी और इन्हां ने फिर गुरु के खालसे का बहुत वड्डा नुकसान किया। गुरु का खालसा जर गया, जिद्दां भी होई वो जरन का यतन किया। हुण लखपत राय नैत नवे तो नवे अटैक वध तो वध जोर ला के हमले करदा। हुण खालसा सोचदा इत्थों निकल चलीए, ते निकलना किधर दी है, कोई उड़के ते चले नहीं जाना सी। हुण एक पासे दरिया, एक पासे पहाड़ियां, ते पिछले पासे दो ही पासे फौजां तुरियां आ रहियां, जाना किधर दी है। और उस समय सरदार गुरदयाल सिंह डल्लेवाल दे दो भरा फिर दरिया की सार लैण वास्ते, जे किन्ना क पानी है, किन्ना क डूंगा, किन्ना क तेज वगदा है, ओ गुरदयाल सिंह डल्लेवालिए दे दो भरा अपने घोड़िया समेत इस दरिया विच कुद्दे ने। ते गुरु प्यारिओ ओ दोवे जांबाज अपने प्राणा की कुरबानी दे गए, ना किते घोड़े नजर आए ते ना सवार नजर आए, वह दोवे रुड़ गए। फिर खालसे नूं पता लग गया कि दरिया दे विच दी इदां ठिल जाना यह भी खतरे तो खाली नहीं है। फिर सोचिया फिर की कीता जावे, फिर रास्ता सी पहाड़ियां दे उत्ते चढ़िया जावे। फिर इन्नियां उच्चियां पहाड़ियां दे उत्ते पहाड़िए भी रास्ता रोक के बैठे सी, उन्हां नूं भी लखपत राय ने डरावे दे के ते लालच दे के गण लिया सी भी जिन्हें मत कीती उन्हें ते मरना ही मरना, उहदे परिवार नूं भी मैं खत्म कर दूंगा, इन्ने डरावे दित्ते होए सी। हुण सतसंग जी खालसे ने सोचिया भी पहाड़ियां बल्दी चढ़दे आ, हुण उपरले पासे पहाड़ी ते मोर्चे बने होए आ ते थल्लों उपर नूं जाणा सी ना चढ़ के। सिंघां ने सोचिया भी ये पहाड़ियां दी खातर साडे गुरु साहिबान ने बड़ी कुरबानी कीती आ, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सीस दित्ता, यह जरूर साडी मदद करनगे। पर भुल गए वो सजनों, तुसी जिन्हां ते उत्ते आस रखदे आ वो पहाड़ियां दी खातर हिंदुआं दी खातर तुहाडे गुरदेव पातशाह ने कुरबानी दित्ती है, इह क्यों भुलदे आ कि तुहाडा खुरा खोज मिटाउण वास्ते मगर वी इक तुहाडे हिंदू ही लखपत राय चढ़ के आ रहा है। भोले विचारे पहाड़ियां दे उत्ते चढ़न दा यतन कीता ते सतसंग जी इत्थे भी खालसे दा बहुत वड्डा नुकसान होया। पहाड़ियां ने दूरों गोलियां ते तीरां दे नाल जिहड़ा सिंह उपर नूं जांदा है उहनूं निशाना बना के थले धरती दे उत्ते सट दिंदे आ। आखिर एक दो पहाड़ियां दे उत्ते सिंह चढ़ जांदे ने, एक दो पहाड़ियां दे उत्ते मर मरा के कब्जा कर भी लैंदे ने, ते हुण जिहड़े पैदल सी उह ते किसे ना किसे तरह चढ़ गए ने पहाड़ियां दे उत्ते, ते जिहड़े घोड़ सवार सी उहनां वास्ते बड़ी विपता सी। हुण जे घोड़ असवार अपने घोड़े नूं लै के जिहड़ा पहाड़ी दे उत्ते चढ़न दा यतन करदा, उह घोड़ सवार सड़े घोड़े दे खड्डां दे विच डिग के हजारां ने अपनियां ऐदां जानां गवा लईआं। हुण गुरु प्यारिओ गुरु का खालसा फिर भी अपनियां जानां तलियां दे उत्ते धर के किसे ना किसे तरां उह पहाड़ियां दे उत्ते चढ़ के पहाड़ियां दे उत्ते कब्जा करके ते गुरु का खालसा अगे वधण दा जिवें यतन करदा, सो ढाडी जथा इउं कहिंदा।

0: चित ना चिते सन सो गाली रब किया जो मन चित न चिते सन सो गाली रब किया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज सहोता परिवार दे नाल वापरे इस भयानक हादसे दे विच उन्हां दा दुख बनाउण लई एकत्र होई समूह साध संगत जी, जिवें कि आपां जाणदे हां कि पिछले दिनी परिवार नूं उन्हां दा इक जी सदीवी विछोड़ा दे गया सी। तो पंज भूतक शरीर नूं अगन भेट करन उपरंत आप सब सतगुरां दी हजूरी विच बैठ के मेरे तो पहला बड़े विरागमई शब्द सतगुरु की बाणी दे सरवण कर रहे सी। तो उसे लड़ी नूं अगे तोरदिआं सतगुरु की पावन बाणी दे विच्चों शेख फरीद साहब का एक बचन मैं आप जी दे नाल सांझा कीता है। कई बार घटनावां कुछ ऐसियां वापरदियां ने कि उदों साडे शब्द थोड़े पै जांदे ने। मैं वीर नाल अगे वी एक दिन गल कर रहा सी, एक समाज की प्रचलित जिहड़ी साडी रीत है वी बंदा संसार उत्ते आउंदा है ते चलिया जांदा है ते उहदे तीन पड़ा मिथे जांदे ने, जिहदे विच एक बालपन है, एक जवानी है ते एक बुढ़ेपा है। जदों बुढ़े बारे कोई दुनिया तो जाता है तो साडे कोल शब्द हुंदे ने, आपां कह सकदे आं वी उहदी एज हो गई, उमर हो गई। पर जदों कोई जोवन रुत्ते तुर जाता है तो फिर साडे कोल शब्द नहीं हुंदे वी किहड़े शब्दां दे नाल परिवार दे नाल जिहड़ा दुख है वह वंडाया जा सके, किहड़े शब्द वरत के परिवार नूं हौसला दिता जा सके। सतगुर ने साडे उत्ते एक परोपकार कीता है वी साडे कोल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी का वह खजाना है। इस पावन खजाने विच गुरदेव का एक बचन है, महाराज कहिंदे जिवें एक किसान खेती करता है ना ते उहदी मर्जी हुंदी है वी उहनूं फसल नूं कच्ची वढ लवे जां पक्की वढ लवे। जैसे किसान बोवै किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी। जिहड़ी बंदे दी जिंदगी है सतगुरु कहिंदे इह वी अकाल पुरख किसान दी बीजी होई एक खेती है, उह इहनूं कच्ची जां पक्की किसे वेले वी वढ सकदा है। पर हां जदों फसलां कच्चियां कई रां वड्डियां जांदियां ने, हुण आम आपां कुदरत दा एक वरतारा वेहने आ वी एक फसल पक्की होवे ते उहनूं किसान अपने हत्थीं वढदा है। तो जदों किसान ने फसल बीजी हुंदी है तो वह आस इहो ही रखता है वी जदों फल पक्केगा तो फिर इहनूं मैं तोड़ लवांगा, फिर इहनूं वढ लवांगा, जदों इह फसल पक जावेगी इहनूं मैं कट लवांगा, इहनूं वढ लवांगा। पर कई वार कुदरत विच ऐसी हनेरी चखड़ झुल जांदे ने कुदरत दे विच वी जिहड़ी फसल अजे कच्ची हुंदी है कुदरत उहनां नूं वी जड़ां तों पुट दिंदी है। जिहड़ा फल जे पक्या नहीं हुंदा उस फल नूं कुदरत दे हनेर ते चखड़ जिहड़े ने समय तों पहलां रुख नालों तोड़ के थले सुट दिंदे ने। तो ऐसा चखड़ सहोता परिवार दे उत्ते झुलिया वी जिन्हां दा बच्चा 45 साल की उम्र के जिहड़ा रुख सी वह कच्चा ही टाणी नूं टुट के थले डिग पिया। तो सतगुरु गुरु गरीब नवाज महाराज बाणी दे विच जदों इस गल का जिक्र करते ने तो महाराज ते बंदे दी जिंदगी नूं इह वी कहिंदे ने वी इह जिहड़ा बंदा है ना इह इक कच्चे किले दी न्याई है। काच कोटंग रचंत तुएंग लेपणंग रक्त चरमणा, संस्कृति श्लोकां विच गुरु अर्जन साहब दा इक वाक है। वह कहिंदे ने बंदे दा शरीर कच्चा किला है पर इहनूं बहुत सुंदर तरीके नाल लिपिया गया है। अंदर इहदे रक्त है, अंदर इहदे मिज है, गारा है, सुंदर तरीके दे नाल इहनूं लिपिया गया है ते इहनूं जिहड़ियां थम्मियां मिलियां होईयां ने उह हवा दियां ने। आसरा जिहड़ा मिलिया है उह हवा दा है तो वह जिहड़ी थम्मी है जदों ढह जांदी है ते वड्डा शरीर वी जिहड़ा है उह धरती दे उत्ते आ जांदा डिग पैंदा है। तो गुरदेव महाराज वार वार बाणी विच इह गल सानूं समझाउंदे ने भी जिहड़ी चीज़ पैदा होई है, महाराज इत्थों तक भी कहिंदे ने भी जैसे जल ते बुद्ध बदा उपजै बिनसै, नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। जिवें जगत दे विच तुसीं वेखदे हो भी पाणी दे उत्ते इक बुलबुला आया पर जिद्दां ही उह फुटिया, जिद्दां ही उह पैदा होया उदां नाल ही फुट भी गया। बंदे दा जीवन भी इदां है। एक दो बेनती करके मैं समाप्ति करांगा। महाराज गुरु गरीब नवास सच्चे पातशाह ने कहा हम आदमी हाँ एक दमी, असी आदमी हाँ कि एक दम दे एक सा दे मोलत मोत ना जाना। बंदे की कोई मनियाद नहीं है, बंदे की कोई गरंटी नहीं है। बाजारों असी कोई चीज खरीदते हैं वो भी कोई पांच दस साल गरंटी होंगी है। सतगुरु कहिंदे बंदे का शरीर इदां दा है इहदी कोई गरंटी नहीं है। तो जो उपजे सो बिनस है परो आज कह काल। ते जिहड़ी बेनती मैं करनी चाहुंदा भी असीं केवल उस वाहिगुरु अगे अरदास कर सकदे आ जिस ठाकुर सिओं ना ही चारा। भाई साहब नूं वापस मोड़ के नहीं लियांदा जा सकदा पर गुरदेव दे चरणां विच अरदास कीती इह जा सकदी है भी सतगुरु उस मनुख दे जीवन दीआं जिहड़ीआं खूबियां सन, उहदे जीवन दीआं जिहड़ीआं क्वालिटियां सन, उह परिवार उहदे बच्चे अगे लै के तुरन, उन्हों याद रखण ते उह सदीव साडे विच है तुहाडे कोल ही है। तो असी गुरदेव अगे अरदास बेनती करते हैं भी मालक परिवार को भाणा मनण का बल बख्शे। तो धन्यवाद जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: गुरसवाली साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवादी हाँ भाई गुरशन सिंह जी उन्होंने जिन्हें गुरबाणी दे प्रमाण दे के सानू इहोजे समय के विचों लंघन लई जो गुरु रस्ता दिखाउंदा है उसकी व्याख्या आप जी नाल सांझी कीती है। हुण जो भाई जोगा सिंह जी सहोता दे निमित्त जो सहज पाठ प्रारंभ किए गए सन नवें पातशाह के श्लोकों तक पहुँच चुके हैं। जो रेंदी बाणी है आप बड़े प्यार सत्कार के नाल सरवण करनी है ते उस तों बाद अंतम अरदास विच शामिल हो के आपां सारिआं ने इहो ही बेनती करनी है कि जो आत्मा साडे तों विछड़ गई उसनूं गुरु महाराज अपने चरणां विच सदीवी निवास बख्शिश करन। उपरंत जो परिवार पिछे रह गया है उसनों इस विछोड़े की घड़ी विचों लंघन वास्ते गुरु महाराज आप हौसला बख्शिश करन। ज्ञानी जी नूं बेनती करदे हां कि जो रहिंदी बाणी है संगतां नूं सरवण करवाउण ते आपां बड़े प्यार सत्कार दे नाल नौवें पातशाह दे खास खास श्लोक जो हन आपां बड़े अदब सत्कार नाल सरवण करने हन ते इहो जे समयां दे उत्ते सानूं तरवास वी बहुत दिंदे हन। आओ रहिंदी बाणी सरवण करिए ते फिर आपां सब अदब सत्कार दे नाल जो है अरदास विच शामिल होवांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
2: खंभ विकंदड़े चिलहां किन्ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लां सो सज्जन टोल। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसाह। धन वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सत गुर प्रसाद श्लोक महला नावा। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन कहो नानक हर भज मना जेबद जल को मीन। बिखिन सिंह काहे रचियो निमुख न होए उदास कहो नानक भज हर मना पर न जम की फास। तरना पो यूं ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना औद जात है बीत। ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤੇ ਤੇ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਹਰਿਆ ਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤਨ ਧਨ ਜੇ ਤੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨਕੀਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰਜੇ ਨੀ ਕੇ ਤਾਮ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਨ ਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾ ਤਾਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤੇ ਪਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਓਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹਿ ਮਹਿਮਾਨ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਪੌਨ ਦੇ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀਂ ਜੇ, ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਏ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੀਂ ਤੈ ਜਾਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਬਖਾਨ। ਜੇ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੇ ਭਾਗ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਵਾ ਮੁਕਤ ਨਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜੇ ਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਤਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਤਰੈ, ਔਰਨ ਲੇਤੇ ਉਧਾਰ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰਪਿਖ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਜਾ ਕਉ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਧ ਬੁਧਾ, ਉਪਜੇ ਬਿਨ ਸਹਿ ਨੀਤ। ਜਾਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨਮੀਤ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਪਰਤ ਤਾਏ ਜਮਫੰਦ। ਜੋ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਵਹੀ, ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹੇ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ, ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਪਰਤ ਤਾਹਿ ਜਮਫੰਦ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਰਮਤ ਫਿਰਿਓ, ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ। जतन बहुत मैं कर रहयो मिट्यो नमन को मान दुरमत स्यो नानक फदयो राख लियो भगवान। बाल जवान यर बिरद फोन तीन अवस्था जान कोह नानक हर भजन बिन बिरता सब ही मान। करणो हो तो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहयो निकसत नाहिन मीत नानक मूरत चितर ज्यो छाड़त नाहिन पीत। नर चाहत कछु और की और पई चितवत रहे उठ गौर नानक फांसी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरते पूर्ण होवे काम। झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देखो बिन सैशन मैं मीत जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत। जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हरे अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तितने नित नानक बिदहर भजो एक मन हो एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर मन मैं तरह गुमान नानक ने फल जात ते ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोते हीन कौ नानक वे बिद पई तौ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तेरा को मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले ओरे मीत कै नानक थिर नार है ज्यो बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कौ नानक थिर काश नहीं सुपने ज्यो संसार। चिंता ता की जिए जो अनहोनी होए ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिन सह परो आज कै काल नानक हर गुण गाय ले छाड़ सकल जंजाल दोहरा। बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होते उपाय कौ नानक अभियोट हर गज ज्यो हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होते उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को नन भियो साथ कौ नानक हे बिपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुरु गोबिंद कहो नानक कह जगत में किन जपियो गुरमंत। राम नाम उर मैं गहयो जा कै समने कोए जे सिमरत संकट मिटै दर्ज तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होय उधारो ए वस्त तजी न जाई नित नित राखुर तार। तम संसार चरण लगत रिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाहीं मैनू जो की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाहीं आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तनमन थी वे हरिया। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਣ ਸੰਗ ਅਲਾਪੇ ਅਠੋ ਨੰਦਨ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈ ਰੋਵੇ ਕਰਹੀ ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੇ ਬੰਗਲੀ ਪੁਨਿਆ ਸਲੇਖੀ ਕੀ ਪਈ ਬਾਰੀ ਏ ਭੈਰੋ ਕੀ ਪਾਂਚੋ ਨਾਰੀ ਪੰਚਮ ਹਰਕ ਦਿਸ਼ਾਕ ਸੁਨਾਵੇ ਬੰਗਾ ਲੰਮਦ ਮਾਧਵ ਗਾਵੇ ਲਲਿਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਵਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵੇ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ ਦੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੌ ਸਕਿਆ ਲਾਪੈ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪੈ ਗੋਂਡ ਕਰੀ ਅਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਗੰਧਾਰੀ ਸੀ ਉਤੀ ਉਚਾਰੀ ਤਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਂਚੋ ਗਾਈ ਮਾਲ ਰਾਗ ਕੌ ਸੰਕ ਸੰਗਲਾਈ ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ ਕੌ ਸਕਿਉ ਬਾਰਾ ਖਾਉ ਖਟਿਓ ਪੌਰਾਣਿਦ ਗਾਏ ਅਸ਼ਟ ਮਾਲ ਕੋ ਸਕ ਸੰਗਲਾਏ ਪੁਨ ਆਯੋ ਹਿੰਡੋਲ ਪੰਚਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੋ ਤੁਠੈ ਧਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਣ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵੇ ਤੇ ਲੰਘੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ਸਰਸਵ ਹੀਰੀ ਲੈ ਭਰ ਜਾ ਸੰਗਲਾਈ ਪਾਂਚੋ ਵਾਰ ਜਾ ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸ ਕਰੇ ਆਏ ਚੰਦਰ ਬਿਮ ਮੰਗਲਣ ਸੁਹਾਏ ਸਰਸਬਾਨੀ ਓ ਆਏ ਬਿਨੋਦਾ ਗਾਵੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ਪੁਨਿਆਈ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬਾਰੀ ਕਛੇੜੀ ਪਟਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪ ਕਾਮੋਦੀ ਓ ਗੁਜਰੀ ਸੰਗ ਦੀ ਪੱਕੇ ਥਾਪ ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲਿਓ ਰਾਮਾ ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪਕੇ ਨਾਮਾ ਗੌਰਾਇਓ ਕਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆਨਾ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੇ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੇ ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਤਰੀ ਗਵਰੀ ਗਾਵੇ ਆਸਾਵਰੀ ਤੇ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪੰਚੋ ਥਾਪੀ ਸਾਲੂ ਸਾਰੰਗ ਸਾਗਰਾ ਔਰ ਗੁੰਡ ਗੰਭੀਰ ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ ਕਾਸ਼ਟ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵੇ ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵੇ ਸੋਰਟ ਗੋਂਡ ਮਿਲਾਰੀ ਤੁਨੀ ਪੁਨ ਗਾਵੇ ਆਸਾ ਗੁਨਗੁਨੀ ਉੱਚੈ